नाम खसम का चित न किया कपटी कपट कमाना। जे तू किसे न दे मेरे सहबा क्या को कढे गणा। नानक बिनवे सो किछ पाइए पुरब।

परम सत्कार योग साध संगत, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इंटरनेशनल कीर्तन कौंसल दे समूह कीर्तनी जथियां वालों अते श्री गुलशन कुमार तीसरी ज्वालियां वालों खालसे दे 300 साल साजना दिवस समर्पित अज ए आत्मरस कीर्तन दरबार किया जा रहा है। इस कीर्तन दरबार दे विच पहली वारी इतने सारे गुरु के कीर्तनी इकट्ठे इको स्टेज ते बह के प्रेम भावना श्रद्धा दे नाल गुरु जस आप संगतां नूं सरवण करा रहे हैं। सब तो पहला कीर्तन की सेवा कर रहे हैं साडे सिख कौम के महान कीर्तनीय इंटरनेशनल कीर्तन कौंसल के चेयरमैन भाई हरबंस सिंह जी जगाधरी वाले। इन्हां वाजे ते सेवा कर रहे हैं इंटरनेशनल कीर्तन कौंसल के उप चेयरमैन भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले। नाल बैठे हैं उप प्रधान संत नूप सिंह जी ऊना साहब वाले और उन्हां दे नाल बैठे हैं भाई दविंदर सिंह जी सोढ़ी कौंसल दे खजांची। उन्हां दे नाल बैठे हैं भाई गुरचरण सिंह जी रसिया लुधियाने वाले जनरल सकत्तर कौंसल दे। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕੇਵਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਗਾਧਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ ਆਡ ਦਾਮ ਕੋਛੀ ਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀ।

धन गुरु अर्जन देव पातशाह इस शब्द विच नाम दी महिमा नूं वर्णन कर रहे हैं कि नाम मनुख नूं किथे पहुंचा देंदा। नीच जात हर जपतिया उत्तम पदवी पाए, नीचा अंदर नीच जात नीची हूं अत नीच, नानक तिन के संग साथ वड्डियां सों क्या रीस। नाम दी महिमा, भगत नामदेव शिंबा जिसने भगती कीती, राजे महाराजे अमीर गरीब सारा संसार आके नमस्कारा करन लगा, ये किदा सदका है, नाम दी बरकत है। आड़ दाम को शीपरो जिदी अद्धी कौड़ी भी कोई कीमत नहीं सी, कोई आदर दे के कोल नहीं सी बैठन देंदा, जपया नाम मन करके ते जदों जपया ता फिर राजे महाराजे आके नमस्कारा करन लगे। ए नाम दी महिमा है। कबीर भगत ने नाम जपया, गुणा दा खजाना बन गए। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर। किदे सदके? नाम दे सदके। गुरु अर्जन देव पातशाह बख्शिश कर रहे हैं कि बुनना तनना त्याग के प्रीत चरण कबीरा। एडी प्रीति पै गई कि एक भी श्वास बिना जपन दे हुण व्यर्थ नहीं हो सकता। आख्या कम कार क्यों छड बैठे हो, तो कबीर जी कहने जब लग तागा बाहों बेही तब लग विसरे राम सनेही। जदों तागा खड़ी दा टुट जांदा है ते फिर उसनू नलकी विच पाके मुंह दे नाल खिचना पैंदा है, तां ओ श्वास मेरा बिना जपन दे चला जांदा है, व्यर्थ हो जांदा है। ते मेरा जपन तो बिना श्वास मेरी मौत है, आखां जीवां विसरे मर जा। गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने सानू नाम दी प्रेरणा दित्ती कि नाम किथे पहुंचा दिंदा है मनुख नू। रविदास टवंता टोर नीत, भगत रविदास मरे होए टोर टोण वाला। ते जदों नाम सिमरन विच जुड़ गया मन, ते फिर की होया, भगवान दे दर्शन होए। जो बचन करदियां ने ओ बचन कदे व्यर्थ नहीं जांदा, परमेश्वर आप आके रसना ते बैठ के बख्शिशां करन लगे। रविदास तवंता टोर नीत, तिन त्यागी माया प्रगट होआ साध संग। साध संगत विच प्रगट हो गया भगत रविदास, भगत भगत जग वज्जिया, वज गया कि रविदास वड्डा भगत है, श्रोमणी भगत है। उचारण करो श्री, इसलिए प्रगट होआ साध संग हर दर्शन पाया, सैन नाई बुतकारिया। भगत सैन जी ने जदों सिमरन कीता, भगतां दी महिमा सुनी आपने के भगत रविदास वड्डा भगत है, कबीर जी दी जय जयकार हो रही है, नामदेव दी जय जयकार हो रही है, तां सैन जी दे मन विच भी एक ख्याल आया जे मैं भी जपां तां मेरा भी संसार ते आउणा सफल हो सकदा है। ते जदों जुड़ गए सिमरन दे विच, सैन नाई बुतकारिया ओ घर घर सुनिया हिरदे वस्या पार ब्रह्म। जदों नाम रूपी पार ब्रह्म हिरदे विच वस गया, फिर भगतां दी कतार विच जा खड़ोते, भगतां में गणिया। हुण इन्हां जातियां दा नाम जदों तन्ना जट जी ने सरवण कीता ना, भई जय जयकार हो रही है भगतां दी, ते नामदेव दे मन विच भी प्रेरणा आई, क्योंकि कीर्तन सतसंग इसे लई सरवण करीदा कि तिना देख मन चाओ उठंदा।
ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਚਾੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੀਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਨਿਤ ਨੇਮ ਕਰੀਏ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਪਾਂ ਤਪਾਂ ਤੋਂ ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ, ਜਪਣਾ ਸ੍ਰੀ ਤੰਨਾ। ਜੱਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਤਰਲੋਚਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਸੀ ਲੰਘਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੋਂ, ਚਰਨ ਪਕੜਦੇ, ਬਈ ਕੋਈ ਠਾਕਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ ਕਰਾਂ। ਬਸ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੰਨੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਭਗਵਾਨ ਆਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੈਨ ਨਾਈ ਬੁੱਤ ਕਾਰੀਆ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾਂ ਮੇ ਗਣਿਆ, ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟੜੋ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਤੰਨਾ ਵਡਭਾਗ। ਵਧਿਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ

नमो श्री पढ़ती बढ़ली सरोही। ए शस्त्रां दी पूजा है, जिस वेले योधे रण विच जूझ देने शस्त्र नू नमस्कार करके शस्त्र दी पूजा उचार देने, ओ शब्दां दा वर्णन हो रहा है। तलवार दे सारे नां ने, भगौती बडैली सरोही, ए नाम हन तलवार दे। शस्त्र दी पूजा है, गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे नमो श्री भगौती।

देखते स्वयं सुभता हाथ सोही सुभता हाथ सोही नमो लोहे की चोट का झले लहंती नमो जीव ज्वाला मुखी जो बलंती नमो जीव ज्वाला मुखी जो बलंती नमो पान की बान गंगा तरंगी नमो पान की बाण गंगा तरंग तेरे शाम है मोक्ष दाती अपंगी तेरे शाम है मोक्ष दाती

खंडो खड़ग अस्कृपान खंडो खड़ग तुप तवर अर्पे अस्कृपान खंडो खड़ग तुमक तवर अर्पे सैफ सरोही सहरी यही हमारे सैफ सरोही सहरी यही हमारे तीर तू ही सैथी तू ही तवर तलवार तीर तू ही सैथी तू ही तवर तलवार नाम तुहारो जो जपे

संगीत भुजंग प्रजात छंद शस्त्रां दे नाम और शस्त्रां दी पूजा साहब जी संगीत छंद विच गा के दसदे आ कहिंदे संगीत भुजंग प्रजात छंद तागड़दन तीरं

त्रास मिटे, नाम लिए जम त्रास मिटे, तल काल नसे हर सर धैये, लोक परलोक सभी सुधरे। सेवा करन दा फल, सेवा दी महत्ता साहिब गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे, लोक परलोक सभी सुधरे, लोक परलोक सभी सुधरे, हर भगत प्राप्त होए।

चार ताल दे अंदर यह रीतबद्ध है। इस नूं ध्रुपद ताल भी कहिंदे ने, चार ताल भी कहिंदे, ध्रुपद ताल भी कहिंदे। सरवण करना

0: चार ताल के अंदर यह जोड़ी का खास संबंध है। जिस तरह इधरों आवाज और तान लगाने पेंदे ने जोड़ी विच इस दे नाल तोड़े और तिहाइयां वजाउणियां पेंदियां ने और खास तौर पर जोड़ी के बोल का और ध्रुपद का संबंध है। तुसी सरवण कीता हुण गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सेव करो करना निज की, तो साहब कहिंदे सेव करी इन्हें की भावत, शस्त्र की सेवा और शस्त्र की पूजा। गुरु गोबिंद सिंह जी फरमा रहे
1: सेव करो करना निज की जैसे विचार पुलाड़, नाम लिए जम त्रास मिटे कल काल नसे हर शरण सिधरिए, लोक परलोक सभी सुधरे हर भगत प्राप्त होए तिहाइए, दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की, दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की, अस प्रभ छोड़ अवर
0: फतेह सतगुरु की। ए जो जंग विच फतेह हुई है ये किसी आदमी की नहीं, ये वाहिगुरु की फतेह है। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहिंदे कि खालसे की फतेह चार कूंट विच होएगी, चढ़दे तो लहिंदे तक खालसे की फतेह होएगी और खालसे के झंडे झूलणगे। उन्हां दे अपने शब्द सरवण करने गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे
1: लंक लूट लिया लंक

0: देखो खालसा की फतेह। चार कूट के अंदर
1: रूम नापत बजाओ शाम मोहरा चलाओ। सुनो नंदलाल एहसान प्रगट करूं मैं अपना राज।
0: नंदलाल दे नाल गुरु साहब के वचन हो रहे भाई नंदलाल साहब ने।
1: सुनो नंदलाल एहसान प्रगट करूं मैं अपना राज।
2: एक वर्ण कराऊं
1: वाहिगुरु सिंह को नाम जपाऊं।
0: चार वर्ण एक वर्ण करा वाहिगुरु सिंह को नाम जपाऊं।
2: चढ़े तुरंग उड़ावे बाज
1: चढ़े तुरंग उड़ावे बाज देश खालसे को।

साहेब की सेव करे आपे बख्शे दे दिसते ऊपर नाई आन करे डर पुछता आए न जाए ना दुखताए ना मेरा ते सुनाए गुरमति शांत वसे सरी गुरमति शांत वसे सरी शब्द चीन फिर लगे न पी आए न जाए ना।

आनको दान न लागत नीको, आनको दान न लागत नीको, आज भले इन्हीं को दियो, आज भले इन्हीं को दियो, जग में जस और दियो सभी को, जग में जस और दियो।

महल के प्रसाद सुधान करे आज आज टे इन्हीं के प्रसाद इन्हीं की कृपा फुन काम भरे इन्हीं की कृपा फुन काम परे इन्हीं का प्रसाद सो गया इन्हीं का प्रसाद सो गया इन्हीं की कृपा सब शत्रु में

गुरमुख जन्म सवार दरगे मलिया सच्चे दरगा जाए सच्चा बिन मलिया सच्ची दरगा जाए सच्चा बिन मलिया सच्ची दरगा जाए सच्चा बिन मलिया जेहा चीरी लिखिया तेहे कर्म कमाए कल्ले आए नानका सदे उठी जा गुरमुख सदे जान आवन कल्या गुरमुख सदे जान

जे जे तुमरे ध्यान को। गुरु गोबिंद सिंह कहते जेड़े परवतदार का नाम नित प्रति जपते ने उन्होंने प्राप्ति होंगे। साफ फरमाते जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ ध्याए है संत। जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ ध्याए है संत। अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे संत। अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे संत। आप मुक्त मुक्त करे संसार। आप मुक्त मुक्त करे संसार। नानक तिस जन को सदा नमस्कार। नानक तिस जन को सदा नमस्कार। नित जपिए सांस

समय दे लोकां ने तां भावें उस नूं शूद्र कहा पर उस रविदास चमार ने राम दा सिमरन करके वाहिगुरु दी भगती करके ओ पदवी पा ली गुरु।

अंतर आत्मा दे नाल हुण मैं परमात्मा दे पिछे इंज लग पई आ जिवे कोई ढोल वजा के निशान लैके उस दे मगर पैंदे। इसे तरह मैं उस निरंकार दे पिछे हुण ओदे नाल मिल पई आ। मिलो गोपाल निशान बजाई, मैं दुनिया दी उस्तत निंदा तो उठ के दुनिया दी परवाह ना कर दी होई उस दे मगर लग पई आ। हुण मैनू ओ दाता मिल पिया, मैनू किसे दी परवाह नहीं। भगत जी कहंदे ने

जैसे दिस करे तैसा होए, आपे आप आप पर सोए, जो किच कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सब कै संग, बूझे देखे करे विवेक, आपे एक आपे अनेक, मरे न बिन से आवे न जाए, नानक साध ही रह समाए, आप उपदेश है समझे आप, आपे रचिया सब कै साथ, आप कीनो आपन विस्तार, सब कुछ उसका ओ करने हार, उसते पिन कहो किच होए, थान थनंतर एक ऐसोए, अपने चलत आप करने हार, कौतक करे रंग आपार, मन में आप मन अपने माहे, नानक कीमत कहन न जाए, सत सत सत प्रभु स्वामी गुर प्रसाद किने वख्यानी, सच सच सच सब कीना, कोट मदे किने बिरले चीना, भला भला भला तेरा रूप, अति सुंदर अपारे अनूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, कट कट सुनी सरवन बखान, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत।

0: अंत न पावत देव सबे मुल इंद्र महाशिव जो करी केड़ा अंत न पार वारिया
1: अंत न पावत देव सबे मुल इंद्र महाशिव जो करी
0: अंत न पावत

जदू बाबर ने हमला करना है ता हर पासे दुखां दे वैण होणगे, लोकी रोणगे कुरलाणगे, ते संदूर दी जगह इन्हां दे सिरां विच लहू भरेगा।

गुरु साहबा ने इस नगरी नू मास पूरी किया ते दूसरे पासे किते हुण ए वसदी नगरी है ते ओ वेला आवेगा के जदू ए लोथां दी लाशां

जिन्हों पाई जिन्हें ए दुनिया पैदा कीती है, ओ ते एक जगह बैठा होया अपनी खेड प्या देखता है। पर एक गल है, ओदा न्याय सच्चा है, आप भी ओ सच्चा है, ते ओदा न्याय भी सच्चा है।

जो कुछ किया ए हो के रवेगा। ए सुन के सारे घबरा गए। एक ब्राह्मण मेव्या दी चंगेर लेके आया। महाराज ए जड़ा बाबर ए बला हिंदुस्तान ते चढ़ के आ रही, ए रुक नहीं सकती। साहब जी कहन लगे नहीं, जो होना सी वो कह दिता है, हो के रवेगा। पर जे तू बचना चाहना है अपना परिवार लैके इथो दूर चलिया जा। ए अगमी खबर कही धन गुरु नानक साहब जी चले गए। ए खबर अग दी तरह चार चवेरे फैल गई। जिन्ना सच मनिया वो चले गए, जिन्ना सच ना मनिया

चली। नाल तुर पे मीर खान ने अपना कोड़ा मर्दाने नु फड़ाया, गुरु साहिबां नु पार

फिर शुक्र कीता। आदेश कहंदे ने मथा टेकना, ऐ बाबा ऐ अकाल पुरख मैं तेनू नमस्कार करदा, क्यों कि तेरा किसे ने अंत नहीं पाया, तू कदी सुख देना है कदी दुख देना है।

0: मंडप महला कहां सुपंक सराय।
1: ओ वड़े वड़े घर, वड़े वड़े महल, किथे वड़िया वड़िया

इस माया दे करके सारी लड़ाई हुई, पर हैरानगी की गल ए कि ए माया पापा तो बगैर कठी नहीं होंदी ते मर गया दे नाल नाल भी नहीं जांदी। जदू आदमी मर जावे ते माया उदे नाल नहीं जांदी, पर पापा तो बगैर

हिंदवाणी, तुरकाणी, पटियारण ते ठकुराणी, किसी का सिर पट गया, किसी दियां बाहां वड्डियां गईयां, कोई थां ही मर गया ते उन्हां नूं मसाणे विच जाके साड़ दिता गया, भाव कि सिपाहियां ने किसी का भी लिया

पर ए अकाल पुरख सब कुछ ते तू आप करना है, मैं किनू आके सुनावा ए दुख ते सुख तेरे भाने विच, किथे जाके रोईए क्योंकि सब कुछ तेरे हुक्म विच है, तू जो चाहवे ओही हुंदा है, किदे कोल जाके अपना दुख दस।

सन या शहर छड़ के चले गए सन वापस आए जिन्ना दे मिले ओ ता खुश होए जिन्ना दा कोई ना रहा उन्हां रोना पिटना शुरू कर दिता उन्हां लोकां नूं रोंदिया देख के तानू गुरु नानक साहब ने आसा काफी महला पहला बेच की समझाया गुरु साहब जी।

गोयली चराण वाला कि जिस तरह कोई लड़का गावां मज्जां चराण वास्ते ले जांदा है, सारा दिन चरांदा है ते शाम नूं उन्हां गावां नूं लेके वापस आ जांदा है। इस तरह ऐ इंसान तू भी इस संसार विच आया है, तेरे जीवन दा दिन जदों मुक जाएगा

वो क्यों मर गया? ओनू नहीं सी मरना चाहिए, जेड़ा मर गया है ना ओनू तुसी रोंदे हो। साहब जी कहंदे ने ओने तो मरना ही सी, जिनू तुसी रोंदे हो अपना फिक्र करो कि कल नू तुसी मरोगे तो तुहानू

काम ये जड़ा रोना है ना, कई लोगों ने यह भी एक काम बना लिया है। उची उची रोंदे ने कि लोकी कहणगे इहदा बड़ा प्यार सी, ये बड़ा रोंदा है। पर साहब जी कहंदे ने भाई जिहड़ा मर गया है ना, किन्ना भी जोर ला ला के रोवो उन्हें तुहाडा रोना नहीं सुनना। ये तुसी रो रो के लोगों नूं सुना।

एक गल और कही ए इंसान ए ना कहो कि गुरु नानक कहंदा सब कुछ छड़ दियो। हां मैं कहना पर विचार

कोई काम कर लो। ज्यो लाहा लाहा कहते ने लाभ, तोटा कहते ने नुकसान। जे किसे काम विच लाभ है ते नुकसान भी जरूर है, ते पाई जिड़ा जमया है उन्हें मरना जरूर है। ते परमेश्वर दी रीत है, ते होंदा ओ है

दिलासा दिता, उन्हां ने रोना पिटना बंद किया है। धन गुरु नानक साहब उन्हां लोकां नूं दिलासा दे के वापस मुड़े तां पता लगा बाबर ने हाली कोरे कैदी नहीं छड़े। धन गुरु नानक साहब फिर बाबर दे कैंप वल तुर पए ने। बाबर दे कैंप तों थोड़ी दूर जाके बैठ गए। साध संगत कैसा है गुरु, ओ रब नाल बहुत प्यार करदा है पर इन्हां दुखी लोकां बारे सोच के आप दुखी हो गया। भावे ये लोग पापी सन, इन्हां नूं सजा मिलनी चाहीदी सी पर उस गुरु नानक दा मन दुखी हो गया। उन्हां दुखी लोकां दा दुख देखिया ते जिहड़े रब दे नाल गुरु नानक प्यार करदा है अज उस नूं इक ताना भी मार दिता। कादे वास्ते? साडे लोकां वास्ते कि ये लोग दुखी ना हो। पर असी लोग किन्ने अकिरत कण हां कि फिर भी उहदा नाम नहीं जपदे। उस अकाल पुरख नूं कहड़ा ताना मारिया? धन गुरु नानक साहब ने। आसा राग विच ये शब्द गुरु साहब जी बयान कर

पर फिर ताना मारिया, फिर शुक्र विच आ गए। ऐ करता अकाल पुरख तू सारियां दा है, पर एक गल है जे सकता सकता कहंदे नी तगड़े आदमी नू, जे तगड़ा आदमी तगड़े नू मारे ता मन विच रोस नहीं हुंदा। पर ए मुकाबला बराबर नहीं सी, बाबर दे कोल बंदूकां सन ते एमनाबाद वालियां कोल सिर्फ तलवारां ते भाले ते तीर कमान सन। ए कोई

धन गुरु अर्जन देव पातशाह इस शब्द विच अकाल पुरख वाहेगुरु दे चरणा विच एक दात मांग रहे हे वाहेगुरु मेरे ते कृपा कर मैनू नाम दी दात बख्श क्योंकि नाम तो बिना होर जितने भी जीव दे कम हन कर्म हन ए त्रिग हन ए किसे कम नहीं क्योंकि नाम तो बिना जो पहनदा है खाउंदा है त्रिगकार है सौ वेरा किसे नू लानत देइए एक वेरा त्रिगकार कह देइए तो बराबर होंगी आख्या बिना नाम तो बिना सिमरन तो पदार्थ जेड़ा खा रहा है जो कूकर जूठन में पाए जिस तरह जूठा जो लोग सुट देंदे हन तां कूकर खांदे हैं आख्या ओ मनुख भी उसे तरह ही खा रहा है झूठ खा रहा है जे उदे रसना ते सिमरन नहीं आया अकाल पुरख वाहेगुरु दा नाम नहीं जपया इसलिए नाम बिना जो पहरे खाए जो कुकर जूठन में पाए मिल मेरे गो

शरीर दे नाल चोज कर दे जो मृतक मिथ्या शीला ओ तेरे इस तरह हन बिना सिमरन दे जिस तरह कोई मुर्दे दे ऊपर चंगे कपड़े पा देवे माड़े पा देवे उनू कोई फर्क नहीं पैंदा इसलिए बिना सिमरन दे जो मृतक मिथ्या सिंगार इसलिए मिल मेरे गोबे क्योंकि तेरे सिमरन तो बिना मनुख मनुख नहीं है इसलिए

तेरे जितने रस भोग तुम सुखा वल बजद चाहे कि मैनू सुख दी नींदर आ जावे किवें आ सकती है। नाम विसार करे रस भोग सुख सुपने ने आख्या जेड़ा बंदा जेड़ा मनुख अपने इष्ट दा अपने गुरु दा सिमरन नहीं करदा उनू सुपने विच भी सुख दी नींदर नहीं पै सकदी सुपने विच भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता इसलिए

सोना मनुच्छा जन्म प्राप्त करके वाहिगुरु ने तेरे लिए किते प्रबंध किते, माता के उदर में प्रतपाल करे, माता दे उदर विच भी तेरी प्रतपालना कीती, जदों तेरा जन्म होया तामी तेरे सारे प्रबंध कीते, कदी अकाल पुरख दे उपकारा नूं ही चेते करके तू जप लैंदा, आख्या जे नहीं जपिया तां चोर की न्याई जम कुरबादा, क्योंकि अमोलक स्वास प्राप्त करके जिन्हां ने जपिया नहीं फिर जमपुर बदे मारी है, आख्या तिन्ना मुख डरावने जिन्ना विसारियो नाऊ, एथे दुख घनेरिया अगे ठोर ना थाऊ, पापी कर्म कमाउंदे करदे हाए हाए, नानक जो मथन माधानिया त्यों मथे धर्म राय, एडी सजादा भागी होवेगा जे तू अपने इष्ट दा अपने गुरु दा सिमरन नहीं करदा, इसलिए हर का नाम जिन मन ना अरादा।

नाम ना जपन वालिया ने कितनी ताड़ना की थी, कितनिया त्रिग कारा पाईया, त्रिग त्रिग खाया, त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया, त्रिग कुटुंब शरीर सहज आख्या ए त्रिगकार उसनू ही नहीं उदे कुटुंब नू ही है जिड़ा परमेश्वर दा सिमरन नहीं करदा। ते फिर जिवें बाबा आनंद सिंह जी महाराज कलेरा वाले फरमाया करदे सन, भाई जदों असी परमेश्वर दा नाम भुल जांदे हां तां साडियां आवाजां दुखां दे कन्नां ते जा पैंदियां हन, सानू दुख आके घेरदे हन। फिर बंदा विलपदा कुरलाउंदा कहिंदा पता नहीं रब ने की कहर दहा दित्ता है, भाई तू उदे उपकारां नू चेते रखदा तां ए दुख तैनू कदे ना वापरदे। आप क्या करदे सन महापुरख के जदों असी अकाल पुरख वाहिगुरु दा सिमरन करदे हां उदा शुकराना करदे हां तां साडियां आवाजां सुखां दे कन्नां ते जा पैंदियां हन, जेड़े सुख चित चेते भी नहीं ना होंदे ओ भी मिल जांदे हन। ओ किदी कृपा भाई, तू शुकराना कर, तू मालक दा काम कर, मालक तेरे सवारी जाएगा। ते जे तू अमोलक स्वास प्राप्त करके नहीं जपदा तां फिर हजूर बख्शिश करदे हन कोट बिघन तिस लागदे, उना नू करोड़ां बिघन लग जांदे हन। जिन हर हिरदे नाम न वस्यो तिन मात कीजे हर बाजा, तिन सुन्नी देह फिरे बिन नामे ओए खप खप मुवे करांजा। ओ खप खप के मर जांदे हन जिन्हां नू वही परमेश्वर दा शुकराना याद नहीं। एदे अमोलक स्वास महापुरख वचन सुनाया करदे सन बाबा जी, कहन लगे एक बिरध शरीर त्यागन लगा ते उदा सारा परिवार कठा होके बेनती करन लगा, बाबा कुछ जांदियां जांदियां सानू सुमति दे जा, मत दे जा। ता ए बिरध बाबा कहन लगा, भाई मैं अपने जीवन विच तुहानू करोड़ां ही कमा के दिते हन ते हुण मेरे स्वास समाप्त हन, कुछ रुपए खर्च करके जे स्वास ले आवो ता मैं तुहानू कोई सुमति दे देंदा। आख्या बाबा ए तक किसे भी कीमत तो नहीं मिल सकते। और सच है प्यारी सात संगत, जे सारे जीवन दी पूंजी भी एक पलड़े ते रख दईए ते दूजे पासे एक श्वास दी भी कीमत नहीं असी दे सकते। ते जिस वाहिगुरु ने सानू अनगिनत अमोलक श्वास दिते हैं क्यों ना उदा सिमरन करिए, क्यों ना उदे चरणा विचो सिमरन दी दात मंगिए, जिवें गुरु अर्जन देव पातशाह मंग रहे हैं, मिल मेरे गोविंद।

0: मत को परम बुले संसार निगुरे का है नाव बुरा।
1: जदों गुरु अमरदास पातशाह जी नूं ए एहसास होया, एहसास दिलवाया उस पंडित ने जो कि इना दे नाल तुर रहा सी, जा रहा सी। इना दा नाम उस वेले अमरू है, अमरू करके लोकी जानते हैं। ए हरिद्वार दी यात्रा ते जांदे हन हर एक साल, ते साध संगत एक पंडित जो इना दे नाल तुर रहे रस्ते दे इच बैठे, ते पंडित ने कहा पाओ के जदों ये प्रसाद देन लगे अमरू जी, ते उसने पूछ लिया तुहाडा गुरु कौन है। ते अमरू जी ने आख्या भाई मेरा तो गुरु कोई है ही नहीं। ते पंडित ने साफ इनकार कर दिता, कहा नहीं तेरे हद का प्रसाद नहीं लेना, तेरा तो कोई गुरु ही नहीं, तू हाले तक गुरु नहीं धारण किया, ए तेरी यात्रावां असफल हन, बेकार हन, क्योंकि तेरा गुरु कोई नहीं है। मैं तेरे हदा प्रसाद नहीं लेना, जिन्ना देर तक मैं तेरे संग रहा, तेरे नाल रहा, ए मेरा टाइम भी व्यर्थ गया, क्योंकि मैं निगुरे पुरुष दे नाल रहा। ते साध संगत जदों मन दे विच ए गल आई, ते अमरू जी सोचन लगी कोई गुरु धारण करना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि बिन गुर मुकत ना पाई ए पाई, बिना गुरु तो मुक्ति ही नहीं। ते फिर ये यात्रावां ये सब असफल होनगियां, बेकार होनगियां, क्योंकि गुरु कोई नहीं। ते गुरबाणी सानू बार बार समझाउंदी है साडा तो गुरु है, गुरु ग्रंथ साहिब है, जिस दे लड कलगीधर पातशाह ने सानू लाया। ते गुरु होंदियां ते फिर असी संग ना करिए, गुरु होंदियां हजूर विच ना बैठिए, ए तां होर भी त्रिग ए अजीब आ, ए तां फिर उस तो भी ज्यादा, क्योंकि जिन्हां दा गुरु है ही नहीं उन्हां दी गल कोई नहीं। जिन्हां दा गुरु है ते फिर गुरु दी हजूरी विच पहुंचन ताही है ना, जे घर बैठिया ही सब कुछ मन दे विच सोच लिया, इत्थों ही मत्था टेक दिंदे, कई बंदे कह दिंदे इत्थों ही मत्था टेक दिंदे जी, सी इह गल नहीं है। असीं पड़भागे हां गुरपुरा जिन सिमरिया सही पए निहाल, गुरपुरा पेटियो वट पागी मने पया प्रगासा। आओ निगुरे पुरुष दा ए हाल है, ते आओ वट पागियो असी सारे गुरु वाले हां, काश ए गुरु कृपा करदा रवे साडे ते, विसरना ही दातार अपना नाम देओ, नाम दी बख्शिश करदा रवे सदा, सानू अपने संग लाए रखे, लड़ राए रखे।